किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

How beautiful does Twinkle Khanna and Bobby Deol look in this film? 52 minutes past 11. और अमर बहुत जल्दी आपने ट्यून इन किया. अभी आपका गाना अगले संडे बजेगा. Thank you so much. I've got. Okay, so Abdul is telling me come to Tanzania. Yes, I know it's been on my wish list for a while now. पक्का मैं ट्रिप करूँगी. मुझे एक्चुअली तंजानिया में तीन जगह आना है. आई वांट टू विजिट अरुषा, आई वांट टू कम टू डार बिकॉज हमारे बहुत अच्छे अच्छे लिसनर्स, मेरे फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे, और जांजीबार फॉर श्योर. जांजीबार आई हैव बीन वंस, बट आई वांट टू डू दिस होल स्ट्रेच टुगेदर इंशाल्लाह वेरी वेरी सून. थैंक यू सो मच. एंड आई गॉट क्वाइट अ फ्यू राइट आंसर्स. वेल डन टू ईच वन ऑफ यू. और एक और अच्छा मैसेज आया है साउथ अफ्रीका से दिलशाद का. शी वॉन्टेड टू डेडिकेट अ सॉन्ग, बट द सॉन्ग शी वॉन्टेड अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव, बट शी हैज़ अ मैसेज टू हर फैमिली इन केनिया, हर मॉम एंड डैड, हर ब्रदर्स तौफीक, सलमान, राबिया, फैजल एंड योर नेफ्यू उबैद, एंड सेइंग आई मिस देम सो सो मच. दिस इज सो ब्यूटिफुल, यू नो आई लाइक द फैक्ट, एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द मैजिक ऑफ रेडियो. आप गाने तो कहीं भी सुन सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, मतलब आजकल तो कुछ ज़्यादा ही अवेलेबल हो गए हैं, बट रेडियो जो है इमोशंस लेके आता है. रेडियो एक कॉन्वर्सेशन लेके आता है, रेडियो एक अपनापन लेके आता है, जहाँ दिल से दिल मिलते हैं, बातें होती हैं, एंड यू फील दैट यू हैव अ फ्रेंड दैट प्रॉब्ली यू हैव नॉट मेट, एंड येट यू हैव दैट फ्रेंड हु यू आर लिसनिंग टू, हु यू आर टॉकिंग टू, एंड आई फील द सेम. मैं आप में से कहीं से पर्सनली शायद नहीं मिली हूँ आज तक इतने सालों में, बट स्टिल आई फील यू आर माई फैमिली ऑलवेज. येस, द सॉन्ग दैट आई आस्क्ड फॉर फ्रॉम बाजीगर, कि अगर हम कहें हमको उल्फत नहीं है, कहोगी भी कैसे मोहब्बत नहीं है, बड़े आए चेहरे पे ये मरने वाले दिखावे का, अहदे वफा करने वाले. यस, इट इज शाहरुख खान एंड शिल्पा शेट्टी फ्रॉम मूवी बाजीगर.

बहुत मजा आया आपकी कंपनी में मुझे. थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल आंसर्स, फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, एंड इट मींस द वर्ल्ड टू मी. सो नाउ वी हैव दिस वंडरफुल वंडरफुल इवेंट कमिंग अप नेक्स्ट सैटरडे, यानी कि आने वाले सैटरडे 26th ऑफ सितंबर एट पावर बॉक्स. इट्स ईस्ट एफएम्स महफिल नाइट एंड आई वांट टू सी यू देयर. दिस इज गोना बी वन अमेजिंग इवनिंग फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स टिल लेट नाइट. वी हैव रिदम एंड रागा लाइव बैंड परफॉर्मिंग. बहुत ही वंडरफुल बैंड है ये, जो सूफी, गजल्स, बॉलीवुड, कवाली, हर चीज गाते हैं, नए पुराने गाने, एंड दे आर ब्रिलियंट. और उनके साथ हैं डीजे जगी वेडी, जो प्ले करेंगे वंडरफुल डांस ट्रैक्स आफ्टर. एंड गेस व्हाट, यू हैव टू सी सम सरप्राइजेस फ्रॉम द टीम ऑफ ईस्ट एफएम दैट इज कमिंग योर वे एज वेल. सो मेक श्योर यू गेट योर टिकट्स फ्रॉम ticketa2.com. एडवांस इज 1500 शिलिंग्स, एट द गेट 2000 शिलिंग्स. देयर इज फूड, there is drinks, and there is so much to look forward. So I'm looking forward to seeing you there. अब तो इतना सारा प्यार आप मुझे on air दिखाते हो, चलो अभी आ जाओ event पे और मुझसे मिलो. I want to see you there, take pictures with you, dance with you, and have fun with you. Okay? So East FM's Mehfil Night coming up next Saturday, that is 26th of September at Bow Box. Get your tickets from ticketa2.com. और जाने से पहले एक शेर हर्ज है, ये भी रहीम ने ही भेजा है कि दिल का जख्म दिखाया नहीं जाता, गम का किस्सा सुनाया नहीं जाता, और मेरे चेहरे पे जी भर के देख लेना, मेरे चेहरे को जी भर के देख लेना, क्योंकि कफन. ये मैंने पहले भी बोला शेर, सॉरी मैंने रिपीट किया, सॉरी. ये वाला अच्छा है कि जिंदगी ने मुझे एक बात बहुत देर से सिखाई, हर किसी के हिस्से में खुशियां बराबर नहीं आती. कुछ लोग फिर पूरी उम्र सिर्फ इसीलिए मुस्कुराते रहते हैं ताकि घर वालों को उनकी तकलीफ ना दिखे. दैट इज ट्रू. आई थिंक पेरेंट्स डू फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डू फॉर पेरेंट्स, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. बट मेरी दुआ है आप हमेशा खुश रहें. एंड अलाउद्दीन जी इज अप नेक्स्ट विथ हिज वंडरफुल प्रोग्राम. सो कीप योर कंपनी गोइंग, हैव अ ग्रेट संडे. हमारी मुलाकात इंशाल्लाह होगी कल ऑन ईस्ट एफएम बिटवीन 1 and 4 PM ऑन रेट्रो टू राइट नाउ. टेक केयर, बाय बाय.

सुनने वालों के लिए एक खास तोहफा लेकर आया है आपका चाहिदा रेडियो इदारा ईस्ट एफएम। हफ्ता 26 सितंबर को एक महफिल सजेगी, संगीत की महफिल गोन जिमखाना पर शाम 4 बजे से रात जब तक आप चाहेंगे। रागा एंड रिदम लाइव बैंड आपका दिल बहलाएंगे, आप बहुत इंजॉय करेंगे। बस एक ग्रुप बना लीजिए और चले आ

बाकी छे आखी एक कलाक 60 मिनिट अरे भाई 3600 सेकंड गुजराती जलसो गुजरात नो रंग ए हालो कमल कंटारियानी साथे इस एफएम पर।

0: नहीं है। कभी कभी दूसरों से तेज दौड़ना जरूरी नहीं बल्कि सही दिशा में सोचना जरूरी है। कार्तिकेय की गति कम नहीं थी परंतु गणेश जी की बुद्धि थोड़ी अलग थी। और यही जीवन में भी होता है, किसी का करियर हमसे तेज बढ़ रहा है, किसी की इनकम ज्यादा है, किसी का घर बड़ा है, किसी की सक्सेस जल्दी आ गई है, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। इसलिए अपनी यात्रा को किसी और की यात्रा से मत नापिए। गणेश जी की तरह सोचिए, दौड़ने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछिए, मुझे जाना कहाँ है। गणपति जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। गजानन की गाथा वॉज ब्रॉट टू यू बाई मारा एनकाजी, योर होम इन द वाइल्ड। स्पेशल ऑफर्स फॉर द हॉलीडे सीजन।
1: ईस्ट FM, Kenya's premier Asian mix.

7 बज के 26 मिनट हो गए ने ते तुसी सुन रहे हो अपना पंजाब ऑन ईस्ट एफएम केनियास प्रीमियर एशिया मिक्स हुन असी गल कर रहे सी अबाउट नींद ते किन्ना सानू सोना चाहिदा आ सो सीडीसी ते 2026 रिपोर्ट मुताबिक सिर्फ 54.8% अडल्ट्स ने कहा कि ऑन मोस्ट डेज या हर दिन ओह वेल रेस्टेड फील करते ने हुन ओबवियसली ए यूएस दा डेटा या केनिया या पंजाबी कम्युनिटी दा सर्वे नहीं पर ये सानू एक इंटरेस्टिंग सवाल दिंदा है कि असी किन्ने लोग एक्चुअली सफिशेंट नींद लै रहे हैं क्योंकि कई बार असी कहते हैं कि मैं 5 घंटे सुती पर मैं बिल्कुल ठीक हाँ फिर दोपहर में हाय मैनू कॉफ़ी चाहिए आ जा चाह चाहिए आ शाम में हाय नहीं मैं बहुत ही थकी हुआ रात में बस फोन 10 मिनट देख के सो लूँगी ते ओहो 10 मिनट पंजाबी टाइम च 40 मिनट बन जाते हैं है ना सो अन ये सारे पासे हुंदा आ सारे लोगों के नाल हुंदा आ पर आई थिंक एज वी गेट ओल्डर सानू अपनी नींद का बहुत ही ध्यान रखना पैंदा आ सो मूविंग ऑन टू द बुजारत मैनू कई सही जवाब आए तो कई बहुत ही गलत जवाब आया सो मैं थोनों एक रिमाइंडर दे रही हाँ अज की बुजारत आ कि मेरे को एक आख्या पर मैं वेख नहीं सकता मैं की हाँ मेरे को एक आख्या पर मैं वेख नहीं सकता मैं की आ मैं थोनों क्लू भी दिता सी कि यह कपड़े पाउण दे नाल उहदी मदद नहीं हुंदी पर कपड़े एडजस्ट करन लई यह बहुत ही यूजफुल चीज हुंदी आ तुसी मैनू अपना जवाब भेज सकते आ ऑन व्हाट्सएप नंबर 07011061106

0: ऐसे का गाना वालिया बाय दिलजीत दोसांज, एंड आई एम श्योर सारे एवरीबॉडी स्टिल इन द दिलजीत दोसांज मूड है, सारिया रीला देख के ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि ओह खरनी अपना ओरा टूर कर रहे हैं इन द यूके। सो असी नींद के बारे गल कर रहे सी, सो नींद सिर्फ थकावट लई नहीं, गुड क्वालिटी स्लीप बॉडी की ओवरऑल हैल्थ लई बहुत ही इंपॉर्टेंट आ, ते सीडीसी एडल्ट्स लई जनरली 7 या होर घंटे रेकमेंड करता आ। पर थकावट का रीज़न हमेशा सिर्फ नींद नहीं हुंदा, आई मीन तुसी फिजिकली बिजी हो सकते हो, मेंटली ओवरलोडेड हो सकते हो, तुसी सारा दिन बैठ रह सकते हो, तुसी इरेगुलर रूटीन फॉलो कर रहे हो, तुसी रात नू फोन यूज़ कर रहे हो, या सिंपली अपने दिन च प्रॉपर डाउन टाइम ही नहीं रख रहे। तो कई बार असी बॉडी नू रेस्ट नहीं देंदे, पर एक्सपेक्ट करते हैं कि सवेर नू बॉडी फरारी वांगर स्टार्ट हो जाए। बॉडी कहती है मैनू भी चार्जिंग ते पहला लाओ, एंड ऑनेस्टली मैं भी इन्हां चीज़ों के बारे कभी नहीं सोचती हुंदी सी, पर जो मैं एक हैल्थी लाइफ स्टाइल करन दी कोशिश की फिर मैनू एहसास होया कि नींद किन्नी इंपोर्टेंट आ। फॉर एग्जाम्पल जो तुसी जिम नू जांदे हो, डोले एवें नहीं बनते, यू नीड रिकवरी, एंड ओह रिकवरी कदों हुंदी आ जो तुसी फुली रेस्टेड हुंदे आ, विच इज़ वैन यू आर असलीप। तो हुण तुसी ऑनेस्टली दसो, तुहानू सब तो ज़्यादा थकावट केड़ी चीज़ नाल हुंदी आ, कम, बच्चे, ट्रैफिक, घर दे कम, या सिर्फ मंडे मॉर्निंग? तुसी मैनू मैसेज कर सकते आ ऑन व्हाट्सएप नंबर 0701 106 106। ते हुण अगे असी चेक करांगे साडे एनर्जी ट्रेनर्स, तुसी मेरे नाल जुड़े रहो एनी ऑन अपना पंजाब ऑन ईस्ट एफएम केनियास प्रीमियर एशियन मिक्स।
1: Kenya's premier Asian mix. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: लो जी नज़म सुनो, रमता अफ्रीका विच।

रोड राम तो मैनू शहर ले आए की दसा शहर नरोबी दा मैं हाल प्यारे जिथे बंदे काले पूत साहब जिन्ना जै पारे मैथों काले वेख मैं आकड़ गया फिर वांगू डंडे एक हफ्ता रह के कीनिया मैं गया यगंडे नकुरु कुसुमू जिंजा फिर डिठा कंपाला जो वसिया सत्ता पहाड़ियां ते शहर नराला उथे डी लाइट बार विच मैं पीन बह गया पहला सी फड़िया पैग ओ भी हाथ विच रह गया जद सामी बैठी हबशन नाले आखे अपनी लड़ गई मैनू वेंदे सारो सामने मेरे आन के।

जी हाँ, सासों की माला, ऐसे का गाना बाय नुसरत फतेह अली खान, द वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी सॉन्ग्स जिन्होंने उन्होंने गाए सी। सो जे थानू इदा दे गाने पसंद आ, ऑन द 26th ऑफ सितंबर, सो दैट्स दिस सैटरडे कमिंग, ईस्ट एफएम प्रेजेंट्स महफिल अनप्लग्ड, व्हिच इज एन इवेंट हैपनिंग एट बाउ बॉक्स फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स, and the whole of the team, East FM team, will be there, and we have a live band, the Rhythm and Raga band, and we have DJ Juggy Verdi on the decks. Advanced tickets in advance are 1,000 shillings and at the gate are 2,000 shillings. So get your tickets now on ticketyear2.com and come and spend the evening with all of us.

0: Kenya's premier Asian mix.
1: East FM.
0: Just celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
1: East FM.
0: Kenya's premier
1: Asian mix.
2: जी हाँ, तुसी सुन रहे हो अपना पंजाब सोनी दे नाल ऑन ईस्ट एफएम केनियास प्रीमियर एशियन मिक्स। ते आज दी गल दा जवाब ए नहीं कि हर बंदा 7 बजे रोटी खावे ते 10 बजे सो जावे। आई मीन लाइफ इनी सिंपल नहीं आ, पर रिसर्च सानू ए जरूर दिखाउंदी आ कि मील टाइमिंग, नींद ते डेली रूटीन्स शरीर नाल कनेक्टेड ने। रोटी दी गल तो असी शुरू कीता ते एंड असी नींद ते एनर्जी ते कर रहे आ। मे बी सेहत का मतलब सिर्फ जिम जाना या सैलड खाना नहीं, कई बार सेहत का मतलब ये भी आ कि टाइम सिर खाना, इनफ नींद लैनी, थोड़ा मूव करना, फोन साइड ते रखना, ते सब तो इंपोर्टेंट गल अपने शरीर ते सिग्नल्स नू इग्नोर ना करना। जे ते जे तुसी रोज़ थके रहिंदे आ या नींद की प्रॉब्लम रेगुलरली हुंदी आ तो सिर्फ मैं बिजी आ कह के इग्नोर ना करो। हेल्थ केयर प्रोफेशनल नाल गल करना बहुत ही सेंसिबल आ। अज का अपना पंजाब का सवाल, जे थानू अपनी रूटीन सिर्फ एक चीज चेंज करनी होवे, रोटी का टाइम, स्लीप का टाइम, फोन का टाइम या डेली मूवमेंट, तुसी की चेंज करोगे? तुसी अज सोचो ए बारे। सो हुण आ गया टाइम बुजारत का जवाब देन का। सो अज की बुजारत सीगी, मेरे कोल एक आख्या पर मैं वेख नहीं सकता मैं की आ। मेरे कोल एक आख्या पर मैं वेख नहीं